0: चुनौती म आफ्ना वैराग्य गाउँछु बैसाखा बनाउँछु
1: काके सागो चुनु चुनु जित्ता भड्को नाले मेरा साई पराया प्रिया।

0: 98 64 00 20 41
1: वैतेश्वर रेंटल एंड कैटरिंग सर्विस चारकोट दोलखा
2: तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ हाम्रो रेडियो 103.4 मेगाहर्ज।

मनोरंजन साहित्य और कला। संस्कृति पर्यटन और विकास कला की जनपक्षीय आवाज हमरो रेडियो 103.4 मेगाहर्ट्ज़।